कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

अर्जुन परतख हार, जिन्हां दा आउण वाले कल दे दिन प्यारे ओ प्रकाश पुरब भी आ रहा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अज दया कीती है, गोंड राग दे अंदर ये अमृतमयी ब्रह्म वाक सारी मनुखता दी झोली विच पाया है, ऑर्डर ऑफ द डे है। आओ गुरु पातशाह जी की पावन ज्ञान, की पावन उपदेश, की सोझी समझौना कर देखन। बड़े प्यार सहित सतगुरां जी दे चरणां विच आपां सारे सरोते जन दास भी तरला लईए। सतगुर आप कृपा करन, आप ही इन्हां अमृतमयी बचना दी विचार सरवण करन, कराउण दी सतगुर आप कृपालता करन, सतगुर आप विच वरत जान, आप त्रुट के सेवा लैन। साहिब जी दे प्यार विच करो रसना पवित्र, प्रेम सहित सारी संगत उच्च

0: सो प्यारियो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का मुबारक अंग खै 866 इसे तरह गौण राग खै ते गुरु अर्जन देव महाराज गुरु नानक साहिब जी दे पंजवें स्वरूप ए पावन बख्शिश करदे खन जी।
1: धूप दीप सेवा गोपाल।
0: धन गुरु अर्जन देव महाराज अज दया दे घर दे विच आ करके जिहड़े भी जग्यासु जन खन सुरते जन खन जिहड़े हमेशा ही भाई इस कन्ना दी स्रोत दे अंदर जदों गुरु नानक तरस करदा खै आप वसदा खै ते प्यारियो जिहड़े कन्ना दे स्रोत दे राही वाहिगुरु गुरमंत्र दी धुनी नूं सुणदे खन या जिहड़े भी आराधना करदे खन सतगुरु पातशाह उन्हां दे भले वास्ते बहुत डूंगी बुझारत खै जिहड़ी बख्शिश करे खन। गुरदेव पातशाह कहिंदे खन रब नूं रिझाउण वास्ते आराधना करन वास्ते अनेकां धर्मां दे अंदर बहुत वख वख साधन वरते जांदे हन। इसे तरह अनमतीए यतन करदे हन कि असी भाई धूप ला के दीवे जगा के उस परमात्मा नूं निरंकार नूं रिझा लईए। हालांकि प्यारे उदास बेनती करे धूप का जिहड़ा संबंध है कई गुरमुख प्यारे भी जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज या जिथे भी भाई आराधना करते हैं उत्थे प्यारे इनू लाउंदे खन। इहदा संबंध है केवल प्यारे सुगंधी दे नाल वातावरण जिहड़ा उस तरह का साध संगत जिहड़ा उत्थे वाइब्रेशन है बहुत परमात्मा दे प्यार वाली बन जाए ते चेते रखिया जे यह धूप इसे तरह दीवे एक किसे जा खास जाति दे नाल या उन्ना दे पाई नाल संबंधित नहीं। अर्ज कर रहा वा गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने इसे तरह सुगंधी लायक है पर जेकर अंदर विकारां दी बदबू है ते उत्थे बाहर दी सुगंधी की करेगी। दीवा इसे तरह कोई घर विच जोत प्रकाश कर रहा है शहीदां दे स्थानां ते खुंदी है पर प्यारे अंदर अज्ञानता है अविद्या है फिर ये भाई दीवे की करनगे। इसे तरह कोई मड़िया ते जा के भाई कोई होर थावां ते जा के दीवे जगाउंदा पिया अंदर चानण ही नहीं प्रकाश ही नहीं फिर किसी अर्थ नहीं। पर इहदे प्यारे च जिहड़ा अंतरी भाव ने गुरु अर्जन देव महाराज कृपा करदे ने कहण लगे साडे वास्ते तां भाव जिहड़ा जग्यासु जन खै परमात्मा दा जस उचारना की उहदे वास्ते धूप तखाउणा खै। इसे तरह दीवा खै कहन लगे वह परमात्मा दे नाम दा दीवा अंदर जग पे सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा पोथी पुराण कमाईए पहोवटी इत तन पाईए सच बूझण आण जलाईए एहो तेल दीवा इउं जलै कर चानण साहिब तौ मिलै। इसे तरह गुरदेव कहिंदे ने एक है असल दे अंदर भाई दीवा प्रकाश भाव अंदर कोई प्रकाश हो चुका है अंदर भाई वाके सच दी जोत जड़ी अंदर सी हुण भाई प्रकाश मान हो चुकी है। गुरदेव पातशाह कहिंदे ने ए असल विच परमात्मा दी सेवा है ए भाई जड़ा गो पाव धरती दा पालक है इंद्रियां नूं पालन खार है अकाल पुरख वाहिगुरु वास

0: खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो Bobby Dodd @403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशन तो हफ्ते दे सत्तो दिन सेवा प्रदान करते ने। इना दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इना दी दूजी लोकेशन दा पता है 71718 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर कैलगरी।
1: ठाकुर गाइए आत्म रंग

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारा, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007
1: जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6660 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दियां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लैटिनम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681 इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: That is,

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी

0: गुरु।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज़ दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM। धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ताड़ी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: गुर अर्जुन पिखो ने

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 4612, 6th स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: गुर प्रसाद नानक मत पाए। श्लोक
1: बावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दया खे सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वच।

पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार तो अमी साधना मारी है जिहा घाले घालना ते भी हो ना उपचारी है ऐसी कलन खेडी है जे दरगे गया हारी है पड़िया ते मियां विचार अगे विचारी है मुंह चले।

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर यथायात बड सो पर सदा सब विद्रत नागर संत मरा

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जैत श्री महला चौथा, घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरयो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे,

तन तन हमारे पाग घर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल।

पौड़ी जिते अंदर सब को बेगदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़ियाई आपे ही कर्म कराएंदा वड़ वड़ा वड़ मेदनी सिरै सिर धंधे लाएंदा नदर पट्ठी जय करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगन भिखना पाएंदा दर मंगन।

पौड़ी सबको आखी अपना जिसनाई सोच कड़ी है किता पो अपना पहले खा संडी है जा रहना नहीं ऐत जगदा कायद गर्भ हंडी है मंदा किसने आखिए पड़

जन पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे।

के कब जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे ऐसे दीनदयाल सतगुरु तीजे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास साहेब जी महाराज जी ने अज दे शुभ दिहाड़े पिता बाबा तेज भान जी माता लक्ष्मी जी दे ग्रह पिंड बसर के

की फतह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गोर प्रसाद चक्र चेहन अर वरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनपाओ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत छुटत प्रवाह अमे अमरा पाद अमृत सरोवर सद परया ते पी वह संत करहे मन मज्जन पोब जिन्हों सेवा करिया तिन पाओ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब काल ठकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे सा धरती पई हरियावली जिथ मेरा सतगुर बैठाया से जंत पाए हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखे आ जाए तन तन पिता तन तन कोल तन तन सो जननी जिन गुरु जनया माए तन तन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिना लय छड़ाए हर सतगुर मिलहु दया कर जन नानक तोवै पाए कान हर बूंद बसौ रो मावल कुसम बसंत गनंत नायावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुदर त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै
पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो हे बन आवे। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो हे बन आवे। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपना, तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने

कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु कुरसहु चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दै जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दै

एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अर रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे

0: हम अंधोले ज्ञानहीन अज्ञाने क्यों चल है मार्ग पंथा हम अंधोले कौ गोरे अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जैत श्री महला चौथा घर पहला चौ पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरै रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा
1: कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

संसार दे झूठे मोह दे मगर लग के किथे तू सच्चे निरंकार नू पलाया है। सतगुरु समझा रहे हैं, नरपत एक सुंगासन सोया सुपने प्या भिखारी। एक राजा अपने सिंघासन ते बैठा बैठा आख लग गई ते नींदर दे विच की सुपना तक रहा है, भिखारी हो गया है। दर दर ते ठोकरां

कोई भी प्रशादा देण नूं तैयार नहीं ते किनिया किनिया गल्लां करदे ने। सुपने विच तक रहा है, सुपने विच पैखारे हो गया है, बड़ा दुख पा रहा है। आ जदों चाठी अख खुली ते की देखिया भी मैं भिखारी नहीं होया, इते सुपना तक रहा सी। आ सतसंगियो बिल्कुल इसे तरह उस निरंकार ने 84 लख जून का राजा बना के तेनू भेजिया, ते तू इस दुनिया विच आ के घर परिवार दे सारे काम कीते, दिन रात धियां पुत्रां लई दौड़ भज लाई, ते दिनों दिन दुख ही दुख पाए, दुख ही दुख। सतगुरु कहिंदे ए सुपना है, संसार दे मूह प्यार सुपना है, क्यों सौ गया है जागदा जागदा, सिमरन विच बैठ प्रभु दे तनवाद विच जुड़, इथे भी सुख उथे भी सुख पाएगा। सुखदेव मुनि दी जो ब्यास ऋषि दे पुत्र होए ने, आ एक दिन ब्यास ऋषि दी पत्नी की आख रही है, स्वामी अपना छोटा जिहा बच्चा सुखदेव हर वेले सिमरन करदा रहिंदा है,

तो पुत्र नू लग रही है सीना मां दा सड़ रहा है। तू सामी बैठ तेनू मेरे नाल की एवें ना टुकिया कर, मैनू कम भी कर लैण दिया कर। अजकल दे पुत्र इंजी बोलते ने। मां अंदर गई अपने पोतरे नू चुक के ले आई, भाव पुत्र दे पुत्र नू चुक के ले आई ते लिया के धुप्पे लटा दिता। आ जदों लकड़ां कट रहा है ना इसका बाग, इसने देखिया भी मेरे छोटे जे पुत्र नू मां अंदरों चुक के ले आई ते धुप्पे लटा दिता है। नट के आया अपने छोटे जे बच्चे नू चुक के छाती नाल ला लिया। मां है की करदी है, तेनू रती जिनी भी समझ नहीं, मेरे पुत्र नू धुप लग जाएगी। मां ने हंजू भर के आखिया, पुत्रा ए पलिया, जिवें ये तेरा पुत्र है उवें तू भी मेरा पुत्र है। जिवें इसनू धुप लगदियां देख के तू सहार नहीं सकिया, इसी तरह तेनू धुप लगदी ते मेरा दिल सड़दा।

घर दे अगे भी जाके खलोवा प्रशादे वास्ते ते हर कोई मैनू किटा रोड़े मार के परे पजा देवे। नाम नहीं जपया कुत्ते दी जून विच पिया होया है। जिस घर दे अगे भी जाके खलोंदा हां इटा रोड़े मार के मैनू लोग पुजा दे।

बाबा नन सिंह जी बख्शिश करदे सन। घर दे विच किक वी सिमरन करन वाला होवे ते कई कुलां नू पार लंघा देंदा है। एडियां सिमरन विच बख्शिशां ने भई आ जदों हर रोज भोजन छकना है ते छकण तों पहला निरंकार दा धन्नवाद करना है। सतगुरु तू मैनू भोजन दिता धन्नवाद बख्शिश कर, ये छक के मैं तेरा सिमरन भी करा। कपड़ा पहनना है नवा तां उसका धन्नवाद, कार विहार कोई भी करना है उसका शुकराना करके। बाबा जी समझांदे सन, जननी जानत सुत बड़ा होत है, अपने बच्चियां नूं भी सोझी देनी है ना। मां समझदी है मेरा पुत्र दिनों दिन बड़ा हो रहा है, अज 20 साल दा हो गया, किड्डे खुशियां मनांदी है। फिर 21 साल दा हो गया, बड़ा हो रहा है, दिन रात यही सोझियां देंदी है कि तू कोई इहो जिहा कार विहार हेर फेर कर वही वध तों वध धन कमावी। सतगुरु की समझा रहे ने, कहिंदे नहीं तेरा पुत्र वड्डा नहीं छोटा हो रहा है। जिन्ना समा उस निरंकार ने इस दुनिया विच इहदा नियत कीता सी दिनों दिन घट रहा है। इनू समझा कि सिमरन भी करे, इनू दस कि संगत विच भी बैठना है, उस निरंकार दे प्यार विच भी जुड़ना है। सतगुरु बार बार आख रहे ने, कहिंदे अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, अजे भी जाग पै इन्नी जिम्मेवारियां नवाउंदा है, कदे संगत विच भी बैठिया कर, कुछ सवास उहदी याद विच भी गुजारिया कर, कुछ नहीं बिगड़िया। वो निरंकार बड़ा ही रहमतां दा मुजस्मा, बड़ा ही दयालु ते कृपालु है, पार नगा देवेगा जदों तेरे पल्ले नाम होवेगा। इत्थे भी सुख उत्थे भी सुख।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारा, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East कैलगरी।

कोट परादी तरियारे, गोर नानक जिन सुनया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारे। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना,

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681 इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue North East Calgary

खेल कठिन है औख जन नानक यह खेल कठिन है किनू गुरमुख जाना। बाबे सावन मलू लिखा पै गया नदी सी ना फिर सुक गई। समुंदर तो गुरु है सिख ता नदी है ताइयों ते बादशाह ने कहा गुरु समुंदर नदी सब सिखी। ओ सिखो तुसी ता नदियां हो मान ना कर लियो समुंदर पानी दवे ता नदियां चलदियां रहिंदियां ने। बाबे सावन मल दी नदी सुक गई निंदिया होन लग पई जदों बेपति होई आके गुरु अर्जन दे महाराज दे चरनी टह पे। पातशाह ने कहा भाई ए ता कपड़े दा ही रुमाल सी तू ता समझ के बह गया खबरिया सब कुछ सानू मिल गया। कहने दे विच ता गुरु नानक दी किरपा वरत रही सी सावन मल लेते हुण कपड़ा रह गया हुण एक कम नहीं करेगा क्यों तू किरपा गवाह बैठे क्योंकि हंकारी बन के आप पूजा कराने लग। जदों पूजा कराने लग पे हुण सावन मल एक किरपा वाली नदी सुक गई। गुरु समुंद नदी सब सिखी नहाते जित वड्याई सिखी वे नदी च भी नहावे तावी वड्याई है पर शर्त है नदी हंकार ना करे सिखां दी संगत करे जेदी संगत करे ओ हंकारी ना हो जाए। ये गुरमन दा बड़ा गहरा कंसेप्ट रे इनू कहा गुर पीरां की चक्री महा करड़ी सुख सार। गुरु ते पीरां दी सेवा करनी बहुत औखी है ते जे कोई कर लवे साथ संगत है जे कोई कर जाए सेवा तो फिर केड़ी चीज है जिहड़ी सेवा चो नहीं मिलती कोई करके वेखे। जदों कोई साधु दा बचन कमा लैंदा है गुरु दा बचन कमा लवे ओ बचन साथ संगत बड़ी वड्डी बरकत लेके आउंदा है। दो चीजा ने बाणी विच इक गुर का बचन एक गुर का शब्द है। जदों गुरु दा शब्द ओ है वाहिगुरु मंत्र ओ है सतनाम वाहिगुरु। गुरु दा शब्द गुर का शब्द कट है कोट कर्म कीते हुए कर्मा नूं कट दिंदा है ते जिहड़ा गुरु दा बचन है ओनू पातशाह ने कहा

0: सतगुरु कृपा करन तुहाडी सारिआं दी हाजरी दरगाही परवान होवे। समूह संगतां दा धन्नवाद, कोटान कोट शुकर दीन दुनी दे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा जो त्रुट के बख्शिशां करदे ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे सारिआं उत्ते नदर कृपा करन। आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नाल जुड़ के अपना जीवन जन्म सफल करिए। इन्नीआं बेनतीआं प्रवान करिओ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੇਡੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਨੂੰ 403-238-6667 ਯਾਨੀ 403-238-6667 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਕੈਲਗਰੀ। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लेन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 1098 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर

0: व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवा में लैंड लई तुसी मालवा टायर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी

0: तनासरी भगत रविदास जी की।
1: तनासरी राग है, बाणी भगत रविदास जी की है, आदर नाल लिखे है जी। तनासरी भगत रविदास जी के। हां जी।
0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
1: ओंकार दो तीन चार नहीं हो सकते, इको ही है। वो एक है जो सदा एक रस रहना, ऐसा नहीं। सवेरे को जो होर होवे, दोपहर होर होवे, शामी होर होवे, असे ते पल पल बदलने। कहया सुने न खाया मन तिना ही सेती वासा। प्रणवत नानक दासन दासा, खिन तोला खिन मासा। खिन च तोला हो जाने, खिन च मासा हो जाने। हुणे ही बड़े दयालु सा, हुणे कंजूस होके बैठ जाने, पर वो एक रस है। परमात्मा ओदा सुभा कदी तब्दील नहीं होंदा, वो एक ओंकार है। और मिलदा किवें है, प्राप्ति किवें है? सतगुरु की कृपा नाल। हुण सवाल है कि जे रब है, हर वेले है, हर थां ते है, ते सीधा ही क्यों नहीं मिल सकदा? सीधे असीं एक कम नहीं कर सकते। मैं जिहड़ी गल करांगा तुहाडे नाल, बाणी दा प्रमाण सबूत ये गवाही नाल होवेगी, नहीं तो गल कच्ची होंदी है। भावें किन्नी चंगी दलील क्यों ना होवे, नाल गवाही बाणी दी होवे। सतगुरु कहिंदे ने कोई आखे मैं भगती करके पा लिया, कहिंदे ने भगती नाल नहीं मिलदा। कोई आखे मैं ज्ञान नाल पा लिया, कहिंदे ने ज्ञान नाल भी नहीं मिलदा। कोई आखे ध्यान नाल मैं पा लिया, कहिंदे नहीं मिलदा। सेवा नाल पा लिया, कहिंदे नहीं मिलदा। हुण इहदी कोई पंक्ति है, कोई गवाही ही है। काल ना मिलो, काल नाल नाल नहीं लब्बा। काल ना मिलो, सेव ना मिलो, मिलो आए अचिंता। अचनचेत वो किवें मिल गया? असल विच जे काल नाल मिलना नहीं, तो काल घालिए क्यों? की लोड़ है सेवा करन दी? क्यों सेवा करिए? क्यों ज्ञान पढ़िए? क्यों ध्यान करिए? ये बड़ा जरूरी है। सब कुछ करना है, एक कम करेगा, पता केड़ा? ये थका देवेगा, ये नाल बंदा डिग पवेगा। आखेगा दाता मेरे को हुण कुछ नहीं होंदा, मैं ते कुछ करन जोगा नहीं। उस वेले वो कहिंदा तू नहीं करन जोगा, हुण मैं करूंगा। उस वेले रब दी कृपा शुरू होंदी है। बाबा अमरदास ढोंदे सन गागर च सेवा, अज कहिंदे ने सतगुरु मैं निकम्मा हो गए। क्यों? पानी ढोण जोगा भी नहीं रह गया, अज मैं डिग पिया। हस पै कह लगे बड़ी देर बाद डिगे, मैं ते तेनू उड़ीक दस पिया तू कदों डिगे। तू गागर चुक के कदी इधर भज गया, कदी इधर भंडे मांजे, कदी इधर से। मैं उड़ीक दस पिया, जे कर ल जो कर सकने कर लै। हो निमाणी मिलेगा किवें? जदों तक मैं कुछ कर सकदा उदों तक नहीं मिलेगा। हो निमाणी ढै भाई, मिलिया सहज सुभाए। जो ज्ञान नाल नहीं से मिलिया, ध्यान नाल नहीं से मिलिया, योग नाल नहीं से मिलिया, तप नाल नहीं से मिलिया, उहदे दर ते डिग्गिया मिल गया। हो निमाणी मैनू कुछ नहीं आउंदा, ना हो जते सती न पढ़िया, मूर्ख मुख दा जन्म भया। दाता कृपा कर, हो निमाणी ढै भाई, मिलिया सहज सुभाए। पूर्व लिखिया पाया नानक संसहाए। भगत रविदास जी कहिंदे ने सतगुरु दी कृपा नाल मिलदा, मुल नाल नहीं मिलदा। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह नाल माता गुजर कौर जी, जा रहे सां, बड़ा सुंदर पोशाका पहने आ। भाई नंद लाल अगों आया, कह लगा मैनू बुलाउणगे, वेखणगे, नजर करनगे, मैं निहाल हो जावांगा। कोल आके सतगुरु ने मुंह मोड़िया, दूजे पासे तुर गए, दे वल वेख्या भी नहीं। कह लगा पातशाह एक बेनती सुन जाओ। कह लगे कि मेरा सिर ला लो मैं देना, पर एक बारी नजर भर के वेख दियो, कृपा करो। उन्हें लिखे है गुफ्तम के जान दे हम, गुफ्तम फारसी है। मैं आख्या जी मैं जान दे देना, सिर दे देना। गुफ्तम के जान दे हम इवज़े यक निगाहे, तो तुहाडी एक नजर तो मैं जान दे देना। बगुफ्ता उन्हें अगों आख्या म्याने माओ तो सौदा ना मे शब्द, ये सिर मट्टे नजर नहीं मिलती, ये जद कृपा होवेगी उदो ही मिलेगी। कृपा कृपा नाल ही मिलती है, ओदी बख्शिश नाल मिलती है, मैं ओदा कोई मुल नहीं दे सकता। कह लगे मैं कोई दुकानदार नहीं सौदा करना, गुरु दुकानदार नहीं हुंदा, रब कोई दुकानदार नहीं कि मैं कुछ दे दिया तो कुछ खरीद लवां। कहिंदे नहीं नहीं साडे कोल कुछ भी नहीं, जो है ओदा ही दिता तो है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागा मेरा। भाई गुरदास जी ने एक बित लिखिया, कहिंदे ने एक बंदा बाग च गया, फुल तोड़ के उथों ते बाग दे मालक अगे रख के कहिंदा जी भेटा प्रवान करियो मेरी। वो कहेगा वो फुल भी मेरे बाग भी मेरा, ते तू किवें मालक बन गया तोड़न नाल, समेर ते को जाए। उथों ही सोने की कनी लैके, क्योंकि पहाड़ ही सोने का, आखे लै पहाड़ सोना भेटा कर रहे हैं, आया कितों है, वो तो पहाड़ ही सोने का। तीसरा प्रमाण दिता कि कोई एक लैके मोती ते आके समुद्र मोती भेटा कर रहे हैं, सिप्पी चो मोती निकलता है, तो सिप्पी गया कितों, आई कितों, समुद्र चो। कहने ने गुरु को ज्ञान लैके, गुरु को सिख आखे आ सुनो मेरा ज्ञान। सतगुरु कहते ने सिखिया कितों, जो रखया तेरा तो है ही नहीं, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागै मेरा, ये सतगुरु की कृपा न मिलता है। हां जी
0: हम सार दीन दयाल न तुम सार,
1: तुम्हें हम डगड़े वे डरते। भगवत जी सानू सिखा रहे ने हम असे साडे वर्गा सर हुंदा बराबर, साडे वर्गा साडे बराबर दा कोई दीन कोई नहीं। दीनदार तां गरीब, दीनदार तां धर्म भी है, जिहड़ा फारसी वाले पासे शब्द आया ना दीन, ओहदा अर्थ है धर्म। लेकिन जेड़ा देन हिंदी संस्कृत वालों आया है इसका अर्थ होंदा गरीब। जदों आएगा ना दीन दर्द दुख भंजन घट घट नाथ है अनाथ, इत्थे दीन होवेगा गरीब, ते जिथे होवेगा दीन बसारी और दीवाने दीन बसारी और उत्थे अर्थ होवेगा धर्म। साडे वर्गा गरीब कंगाल कोई नहीं, हम सर देन दयाल ना तुम सर, तुहाडे वर्गा दयालु कोई नहीं। इनी दया कौन करेगा, बंदा ते थोड़ी जी दया करदा उस तो ज्यादा इनू क्रोध आ जांदा, इहदे अंदर क्रोध भी वसदा ना, मेरी दया नहीं निर्दयता भी वसदी है, कठोरता भी वसदी है, पर तुहाडे वर्गा दयालु कोई नहीं, साडे वर्गा गरीब दीन कंगाल कोई नहीं। हां जी
0: अब पतियार क्या कीजा,
1: पतियार शब्द दे अर्थ बहुत ने, जेड़ा इथे लगदा वो आजमाइश, किसे नू अजमाउणा, कोई होर को अजमाउण दी गल कोई नहीं, किसे प्रमाण दी लोड़ नहीं। साडे वर्गा गरीब कोई नहीं, साडे कोल अपना कुछ भी नहीं। गरीब हुंदा जिसका किसे वल ध्यान होवे, अपना कुछ भी ना उसका होवे, दातिया साडा ते तन भी अपना नहीं, साडा कुछ भी नहीं, जो कुछ है तेरा, ਹੋਰ ਪਤੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਪਤਿਆਰਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ।

0: संपूर्णता बख्शो
1: वो केड़े
0: अधूरी चीज कोई भी रह जाए तो खटखटाउंदी है बंदा चाहुंदा हर पक्षो पूरा हो जावा बंदे की गल ही अधूरी रह जाए कोई ना पूरी सुने तो नाराज हो जाता ये चाहुंदा जो भी हो पूरा जाओ पूरे का पूरा हो जाए मैनू भी पूरा कर दियो की है ये नहीं आख्या दुनिया का सोना ही मैनू दे दियो हीरे मैनू दे दियो दुनिया भर का राज मैनू दे दियो नहीं कहिंदे ने तुहाडे बचना ते मैनू भरोसा आ जाए मैनू शरदा दा दान बख्शो संपूर्णता यह बख्शो कि तुहाडे बचना लई मेरा मन मन जाए कि जो तुसी कहिंदे हो बिल्कुल ठीक है असे बाणी भी सुने जाने नाल शंके भी टिके होंदे भगत नामदेव जी ने यह कटाक्ष किया वा कहिंदे ने जिन्हां देवतियां दी पूजा भी करदे हो उन्हां दे बारे तुसी गलत कहानियां भी कड़ियां शंके भी तुहाडे मौजूद ने उपाई जिथे शंका है उथे शरदा कोई नहीं शरदा है तो शंका कोई नहीं शंके मिटाउण वास्ते एक ही इलाज है एक ही दवाई है वह है प्रेम सच्चा प्रेम होवे ना ते कदी शंका रहिंदा ही नहीं भगतां नूं प्रेम है वैसे भगती का अर्थ भी प्रेम ही है दो तरह के प्रेम ने दुनिया ते बड़े ध्यान नाल सुनना एक उन्हूं कहा इश्क मजाजी दूसरा इश्क हकीकी हकीकी की है नाम का प्रेम गुरु नाल प्रेम सिखा नाल प्रेम सिखी नाल प्रेम अपने ककारा नाल प्रेम दुनिया का जेड़ा प्रेम है भाई गुरदास जी ने एक पौड़ी लिखी है वो शुरू होंगी जे लेला मजनू आशकी चौ चक्की जाती है सारा कुछ करके ना वो लिख के पंजा का ना ते अखीर कहते ने गुरसिखा की भी प्रीत है एक ही प्रीत है सोहनी तो नदी धरते से रांझा जेड़ा सी उन्हें वो तो चौधरिया का पुत्र होकर मझियां का शेड़ू बन गया कुर्बानी तो है ना बड़ा कुछ इन्हें किया मजनू चंगे घर का बच्चा होके छदाइया वांग फिरदा सी पे पर इत्थे एक घाट इश्क मिजाजी वाला चाहुंदा है दुनिया सारी उजड़ जाए बाजार सड़ जान कख ना रहे राह वेले हो जाण तो मैं जावां ये दुनियावी प्यार वाले जेड़े ने ते चाहुंदे ने कोई वेखदा तो नहीं पिया मैनू आउंदे नूं मैनू जांदे नूं डरदा लेकिन रब दा प्रेमी गुरु दा प्रेमी जान लग्या डरदा नहीं डंके दी चोट नाल कहिंदा मैं प्यार करना गुरु नूं मैं जा रहा आओ किसी ने नाल जाना ते आ जाओ चखड़ चांगी मीह बरसा पीगुर देखण जाई समुद सागर होवे बुखारा गुरसिख लंघ गुरु पै जाई इनू ते प्रेम है पीर मुरीदा पिरहड़ी वो जड़ी पौड़ी है ना लेला मजनू आशक ओदी आखरी पंक्ति है सिख दी प्रीति पीर मुरीदा पिरहड़ी गावन प्रभाते अमृत वेले उठ के गाउंदे ने हुण रब दे प्यारे कहंदे ने आओ मैं रब नूं प्यार करन चलिया जे मैं छुप के नहीं किसे कोलों जाना मैं कोई चोरी करनी कहंदे ने घाटे अवगट डूंगर गनो एक बनेरगुण बैल हमार रमैये से एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार को बनजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे हम नजारो राम को सहज करो व्यापार मैं राम नाम तन ला दिया भिख ला दी संसार आओ भाई आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे मेरे ते कृपा कर पूर्ण श्रद्धा बन जाए प्रेम दे दे मैनू के शक आवे ही कोई ना हां जी
2: हां बल बल जाओ रमैया कारने
0: कारने दा अर्थ की है कारने दा अर्थ है कारनामे कहने ने कारनामे कीते तुहाडे कौतकां तों तुहाडे कारनामियां तों मैं बल बल जाना बल दा अर्थ है बलहार मैं कुर्बान जाना जो भी दाता तो कीता जो सिरजे है जो तू बनाया है, जो तू कर रहे है, मैं उस तो सदके जाना। तेरे हर कौतक तो बल बल जाऊं, रमैया कारने राम दे कारने में तो मैं सदके जाना, मैं कुर्बान जाना। हां हां जी,
2: कारण कवन अबोल।
0: मैनू एक कारण दसो, तुसी मेरे नाल बोल दे क्यों नहीं, गलबात क्यों नहीं हो रही। भगतां दी रब दे प्यारियां दी सिद्धी रब नाल गल है, परमात्मा नाल हो ते साडी भी सकदी है, पर सानू दुनिया दे चमेले नहीं छड्डदे। असी जद चुप करके बैठे हैं ना, खिमा करना वेख लेना मैं सच कह रहे हां कि नहीं, चुप करके भी बैठे हैं। कदी धी नाल गल्लां करदे रहिंदे आ मन कर, कदी पुत्र नाल करने, कदी सज्जनां नाल करने, कदी बिजनेस लई करने, कदी दुश्मनां नाल झगड़ने। असी ते रब दियां गल्लां किवें करिए, दुनिया दियां गल्लां नहीं मुकदियां। दुनिया दियां गल्लां इन्नियां ने कि मुक्कण च ही नहीं आउंदियां। ओह लैके सौ जाने, ओह लैके उठने आ। और रब दे प्यारे ना ना जुड़ सकन ते कहंदे ने अज तेरे नाल गल क्यों ना हो रही। फरीदा याजना सुते कंथ सिवंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो दोहागने तुम क्यों रहन वहाए। सीधी गल जिन्हां दी है, गुरु अर्जन देव कहंदे ने परमात्मा ने मैनू एक गल कही, जिसनू मैं राह विखा दिया उसनू कोई भुला नहीं सकता, ते जिसनू मैं भुला दिया उन्हों कोई राह विखा नहीं सकता। जिसे दिखाले वाटड़ी, जिसे दिखाले वाटड़ी तिसे भुलावे कौन। जिसे भुलाई पंध सिर तिसे विखाले कौन। रब नाल जिन्हां दी सीधी गल है, परमात्मा नाल गल है, वो जरा क टुट जाण ते कहंदे ने अज गल क्यों नहीं हो रही, अज तू मेरे नाल जुड़ क्यों नहीं रहा। बहुत पुरानी घटना है और इतिहासक है। यहूदियां दा पैगंबर मूसा जा रहा सी ते आ जड़ी अरदासां करदा पे। हुण अरदासां एक अनपढ़ बंदा एक पढ़िया लिखिया ग्रंथी करदा, बड़ा फर्क हुंदा पढ़े लिखे दा ते अनपढ़ दा। उह कहिंदा अरदास उहदी सुन लो, कहिंदा खुदा मैं तैनू वेख्या ते नहीं, पर मैं सुनिया कि तू है। वेख्या मैं कोई नहीं, जानदा मैं कोई नहीं, पर मैं सुनिया तू है। ते मैं ये भी सुनिया कि ना कोई तेरा धी ना कोई पुत्र, तू कल्ला ही है, अपने वर्गा आप ही है। ते मैं लभदा सब पिया कोई मित्र मेरा बने, कोई भी नहीं बनिया, भेडां बकरियां ही ने मेरे कोल। ते आपा मित्र बन चलीए, क्योंकि मेरा भी ना कोई मां ना कोई बाप ना कोई भैन, ना मैं भी कल्ला ते तू भी कल्ला, आपा मित्र बन जाइए। हुण बड़ी हौसला करदा पिया, हाथ जोड़ के कहिंदा जे तू आ जाए ना अद्धे वधिया भेडां बकरियां तेनू दे दे, जे तू आ जाए साग ते मिस्सा अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा, देरी चे तेरी जुत्ती टुटी होवे ते मैं गंढ देंगा, तेनू ताप चढ़ी होवे तेरे बुखार उतार देंगा, मैनू बूटी का पता, तेनू जुआ पै गई हुण ते मैं बूटी का पता मार देंगा सिर च पा के। मूसा चलिया कहन लगा वो मूर्खा इस तरह अरदास करी दी सिख मेरे को सिखाई, वो चार कदम गया कहन लगा जी भुल गई है, वो हुण मुंह दे थप्पड़ मारिया ते कहन लगा ये गलत अरदास ने करिया कर। कहन लगा जी नहीं करता। कहन लगा वाह रब्बा अजे मिलिया नहीं ते पहले ही थप्पड़ पै गया, अज तो बाद मैं तेरा नाम ही नहीं लवांगा, मैनू तेरे वर्गा मित्र नहीं चाहीदा। अज हुण कारण कमने बोल, मेरे नाल बोलदा क्यों नहीं, मेरे नाल तेरी गल क्यों नहीं हो रही। जुड़न लगा ना ते जुड़ नहीं सकिया, पर एक आवाज आई वही आमद सूए मूसा अज खुदा, वही कहंदे ने पैगाम, पैगाम खुदा दा आया सुन भाई, बंदा ए मारा जिमा कर दी जुदा, मेरा बंदा मेरे नाल जुड़िया ते सिद्धियां मेरे नाल गल्लां कर रहा सी, मैं ते उहदा साग खा रहा सां, उहदी अरदास मेरे तक पहुंच रही सी, उहदे कोल शब्द चंगे नहीं सन, उहदे कोल प्रेम ते है सी ना, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਰਾਏ, ਵਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਰਾਏ, ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਰਾਏ ਫਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਦੀ। ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ। ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਅਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ?
2: ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਦੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ।
0: ਕੁਛ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹੋ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਸਾਂ, ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਥੇ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁੱਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਮਰ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵੇ ਸੰਤ ਕਰੇ ਮਨ ਮੱਜਨ, ਪੁੱਬਜਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਰੈਵਰ ਬਿਲਚੋ, ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਭਟਕਿਆ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋ, ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ। ਪਰ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਕਬੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼, ਮਨ ਕਾ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ,
2: ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵਾ,
0: ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰਕਾਰੇ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਲਾਹੌਰ, 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕਾਬਲ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਹਾਂ, तेरी मर्जी, पर मैनू एक एहसास जरूर रहे, मैं विछड़िया होया ते मैं अजे दूर हाँ। मैं ये ना भुल जावा कि मैं विछड़िया नहीं। एक पंक्ति है, विछड़िया का क्या विछड़ा, जेड़े रब नाल विछड़ गए उन्हें होर विछोड़ा की पैना, मिलिया का क्या मिल, जेड़े रब नू मिल गए उन्होंने होर मिलकर की लैना। मेल तो असल हो गया, कहते ने बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेख है, ये भी तुहाडे लेख है। अगली पंक्ति सरवण कीती है, कह रविदास आस लग जीवो, दुनिया विच दुनियादार बंदे आस नाल जी रहे ने। एक फकीर कहिंदा, ऐ आकाश तू जमदे भी वेखे, तू मरदे भी वेखे, तू इथे वसदे भी वेखे उजड़े, क्योंकि तू तो कायम है, आकाश है ना, आकाश वेख रहे है सब कुछ, तू इथे मकान बनदे भी वेखे, ढहंदे भी वेखे, रुख उगदे भी वेखे, रुख पुटींदे भी वेखे, तू हर बंदे नू वेखिया। मैनू एक गल दस, इन्ना दुख हुंदिया बंदा जीउंदा किवें रह गया, ये जी किवें रहा। उन्हें एक गल जवाब दिता, कहन लगा आस दे कारण, कि अज ठीक नहीं कल नू ठीक हो जाएगा। दुनिया वालों सानू चोटा तो पैंदियां ने सैकड़े, उस वेले औखे भी बड़े होने आ, पर समझौता कर लेने, कोई नहीं पुत्र ने अज नहीं मनी कल मन लवेगा ठीक हो जाएगा, आ काम अज नहीं बने कल हो जाएगा। कहिंदे ने दुनियादार जे आस नाल जी जांदा ते परमात्मा मैं तेरी आस नाल क्यों ना जीवां, दुनिया दी आसां ते पूरियां हुंदियां नहीं, पर तू किसे नूं निराश रखदा ही नहीं। मैनू आस है, मैं इस आस नाल ही जी रहा, कह रविदास आस लग जीवो, ते जिहड़ा तेरी आस विच जीवना ना, तेरी आस विच ते तेरा नाम ही जपया जा सकदा है, ते तेरा नाम मैं जपदा हुआ ते मैनू होर की चाहिदा, बस तू याद आउंदा रहे, तू याद आउंदा रहे सानू सिखिया देगा जो गुरु अर्जन देव ने दित्ती है, हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन मैं आप नंकारा। इनू एक प्रमाण दे के मैं बेनती करा, ते मैं इत्थे कह दिता शब्द कार, हुण लफज ही है ना, कार ते बाहर कितने होवेगी, इत्थे ते कार कोई नहीं ना, पर शब्द है। पर जदों असीं कहिंदे आ ना वाहिगुरु, ऐसा नहीं कि मैं आख्या इत्थे आ ते वाहिगुरु किसी होर थां ते बैठा, नहीं, जिथे हरिया रद गया तिथे हर मित सहाय, तुसी जिथे आखो परमात्मा उथे ही है, उसे वेले ही है, हर थां ते है तू सबनी थाई, जिथे हो जाई सच्चा सिरजन हार जियो, घर आखो वाहिगुरु तुहाडे घर विच है, बाहर आखो वाहिगुरु घर बाहर तेरा प्रवासा, तू जन के है संग। आओ लड़ी वार विचार जड़ी चल रही है, पा कह रविदास आस लग जीवो, चिर बहो दर्शन देखे, बड़ी देर हो गई। असल विच इत्थे युगां दी गल नहीं, एक घड़ी दिवस मुख बहु दिहाड़े, एक घड़ी न मिलते तो कलयुग होता, एक क्षण भी विसर जाए तो भगत कहिंदे ने बड़े जन्म हो गए, बड़ी देर हो गई है, एक पल भी हो जाए तो कहिंदे ने युग बतीत हो गए, चार पै चाहो जुगै समान है, रहन भई तब अंत न जाने, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, बड़ा चिर हो गया तेरे दर्शन कीते हैं, हुण ते मैनू दर्शन दे। ये असल सानू समझा रहे ने, निमाने नताने हो के जिस दिन हाथ जुड़ गया उहदे दर ते डिग पै, उस वेले सिर ते हाथ रख के गल नाल ला लवेगा। अड़ीक ने यही हां, हो तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे, मैनू कदों गल नाल लगाओगे। वो कहंदे ने तू ही दूर भजना, मैं ते तेनू सदा ही लगाया, हुणे ही लगाना, देर वाली गल कोई नहीं, बस दुनिया दियां आसां छड्ड रब दी आस बना, उस वेले हाजर नाजर है, उस वेले गल ना लगा लैंदा है। आओ अगली है लड़ी वार विचार जेड़ी है वो सर्वन करो। हां जी,
2: चिर पयो दर्शन देखे,
0: तुहाडे दर्शन देखे आ, कृपा करो ए पल पल जेड़ा बतीत नहीं हो रहा, ये मेहर वरताओ। हां जी,

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th Street, Northeast, Calgary।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नूं 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पॉल सेखों जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670, 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स सोफे लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशंस तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करते ने। इना दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इना दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171 80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570 65 V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0: सलाह डेजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

यो परया सैल पत्थर मह जंत उपाई ताकारिजक आज्ञा कर धरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्त हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मान पौ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरी शरिया। तिन

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू काट काट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ, त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तापह जपह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत सास्त जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वाडे अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निह चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई, तुद आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी, तू सब नी त्याया। जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै भई रे निवासा। पाणी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हौ जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगधा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम।
सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ जप।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ।

मूढ़ कशपीद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही पुपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहुरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण करता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा,

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शबद गावण आइया सबदो ता गावह हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सत गुरु मैं पाया।

हमरे हर प्राण स्वामी सखा हर मीता, मेरे मन तन जीह हर हरे हरे, राम नाम तन माल, जा को पाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे, गुण गावै गुरमत,

कटिए सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिए सब ना दावे साहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास